0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साला तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਮੁਲਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हां जी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हां जी 1674 AM। थैंक यू।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला, दिल नु छू जान वाली अते रूह नु हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
3: देखो सच बता दो।
4: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
2: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नु तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
5: Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji. Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji.

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com।

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो
2: और जो हुकम मेरी सरकार
1: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
2: आहो जी आहो
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच

0: रावे लव यू ऑल भावना को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनना होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना ना जी ना जी।

0: Television is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: आपकी खिदमत में मैं अपनी चंद गजलें पेश करने की इजाजत चाहती हूँ. इजाजत है
3: मेरी

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स टंच विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: नीचे थी आके पक्का भी हो गया। की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
3: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
4: देखो सच बता दो।
5: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
3: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधु। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
6: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
7: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
6: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
7: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
6: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
7: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
6: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
7: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: थोड़े मोढ़े नाल मोढ़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
0: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो।
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: तीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो।
3: सत श्री अकाल शुभोय बादशाह, ते तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो। हां जी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला, दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
3: देखो सच बता दो।
4: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
2: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
5: इतिहास जो सानू जदों जदों

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
0: यानी

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ।

हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन, रेडियो हांजी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साला तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 1674 AM।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानूं हेल्प करनगे थोड़ी अपने टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेरबी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: ਸਤਿਕਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच भी तुहाडी सेवा विच।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
2: हाँ जी हाँ।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station. Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: रेडियो हाँ जी 1674।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हाँ जी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji. Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji.

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: This station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर? हैरी स्पार्क वाल जाना। तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: हां जी, सुनील ग्रोवर, सुनील ग्रोवर। हां जी हां जी, 1674 ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674। सुनते रहो सुनते रहो। हां जी, AM।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: हांजी रेडियो
3: वापस एक बार फिर तो स्वागत करते हैं रेडियो हाँ जी 1674 AM दी तरंगा के उत्ते। हुण गलबात करते चलांगे फुटबॉल की। फुटबॉल का वर्ल्ड कप शुरू हो जा रहा और वर्ल्ड कप के नाल संबंधित जिहड़े फैक्ट्स ने वह भी थोड़े नाल जरूर सांझे करांगे। खास करके फीफा वर्ल्ड कप नूं दुनिया दे विच सारे नालों ज़्यादा वड्डा ईवेंट है। ओलंपिक नंबर 2 दे उत्ते है, फीफा वर्ल्ड कप नंबर 1 के उत्ते है, जिसनों सब तो वध वार लाइव जिहड़े ब्रॉडकास्ट माध्यम के नाल देखिया जा सुनिया जाता रहा। फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत है जिहड़ी 1930 दे विच होई सी। पहला टूरनामेंट उरुग्वे दे विच खेडिया गया सी, पहला वर्ल्ड कप भी उरुग्वे ने ही जितया सीगा। ब्राज़ील की टीम है जिहड़ी वो अजे तक की इस वर्ल्ड कप के शुरुआत तो लैके हुण तक सब तो सफल टीम रही है। ब्राज़ील की टीम ने 5 वार वर्ल्ड कप है जिहड़ा वो जितया है। ब्राज़ील की एक इकली इहो जी टीम है जो हर वर्ल्ड कप दे विच खेडी है। इस तो अलावा कोई भी अजिही टीम नहीं है दुनिया दे विच जिसने अजे तक 1930 तो लैके सारे वर्ल्ड कप ने जिहड़े वो खेडे हुण। वर्ल्ड कप संभावी तौर पर 4 साल के बाद करवाया जाता जो कि सानू सारे नू पता है। 1942 और 1946 के वर्ल्ड कप दूसरे विश्व युद्ध के कारण नहीं खेडे जा सके सन। जर्मनी और इटली ने 4-4 वार वर्ल्ड कप है जिहड़ा वो जितया है। इस दे नाल नाल एक होर रिकॉर्ड इटली ने बनाता है कि 3 वार लगातार वह वर्ल्ड कप जितण तो बाद बाहर बैठे ने। इस वारी भी इटली की टीम है जिहड़ी वो क्वालीफाई नहीं कर रही। अर्जेंटीना ने 2022 दे विच फ्रांस नू हरा के अपना 3रा वर्ल्ड कप जितया सी और बाकमाल मैच है जिहड़ा वो सानू देखण नू मिलिया सी जिस दे विच मबापे अते लाइनल मैसी दी जिस तरह की परफॉर्मेंस रही सी वो भी बाकमाल सी। 2022 वर्ल्ड कप दे नाल लगभग 5 बिलियन लोग किसी ना किसी तरीके नाल जुड़े सन अते इस नू दुनिया दे विच सब तो वध देखा जाण वाला खेड टूरनामेंट है जिहड़ा वो मनिया जांदा है। जिस तरह पहलां वी साडे नाल गलबात कीती है, वर्ल्ड कप इतिहास का सब तो वध स्कोर वाला मैच 1954 दे विच खेडिया गया सी जिथे आस्ट्रेलिया ने स्विट्जरलैंड नू 7 गोलों के नाल मात दित्ती सी। कैमरून दे रोजर मिला 42 साल की उम्र के विच गोल करन वाले सब तो वड्डी उम्र के खिडारी ने वर्ल्ड कप के पूरे इतिहास के विच। इस नाल जेकर आप देखिए तो मिरोसलाव क्लोज जर्मनी जो कि वर्ल्ड कप इतिहास के सब तो वध 16 गोल करने वाले खिडारी ने। इस दे नाल पहले दुनिया का इको एक यहो जिहा लीजेंड खिडारी होया जिन्होंने 3 वर्ल्ड कप जीते ने और 2026 वर्ल्ड कप के पहली बारी जिहड़ा है वो 48 टीमां ने हिस्सा लै रही ने। इस तो पहला 32 टीमां तक ही इस नूं सीमित रख्या जांदा रहा और इस वाली 48 टीमां ने जिहड़ियां वो इस दे विच हिस्सा लै रही ने। फन फैक्ट की गल करिए 1964 दे विच वर्ल्ड कप ट्रॉफी है जिहड़ी वो चोरी हो गई सी 7 दिनां दे बाद इस नूं रिकवर किया गया सी। इस दे नाल नाल 2 उन्हां खिडारियों की भी गल इस अपनी गलबात दे विच जरूर करते चलते हैं जिन्हां दे बारे पूरी दुनिया है जिहड़ा उन्हां नूं खेड दे भी देखना पसंद करती। उन्हां दे फैन भी आपस दे विच पूरी तरह वंड हो जांदे ने कि जिसने विच अक्सर यह सवाल पूछा जाता कि रोनाल्डो जां मैसी। सो आओ दोनों की गल करते हैं, रोनाल्डो ते मैसी बारे दिलचस्प जिहड़े फैक्ट्स ने वो थोड़े नाल सांझे करते हैं। रोनाल्डो फुटबॉल इतिहास के सब तो वध अधिकारिक गोल करने वाले खिडारी मने जाते हैं। यूएफा चैंपियंस लीग दे विच सब तो वध 140 गोल करन दा रिकॉर्ड रोनाल्डो दे नाम है। रोनाल्डो पहले खिडारी हैं जिन्होंने 5 वख-वख वर्ल्ड कप टूरनामेंटा दे विच जां वख-वख अंतरराष्ट्रीय टूरनामेंटा दे विच जिहड़े ने वो गोल कीता है।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: You are listening
3: Haji Haji Haji Haji Haji Haji Radio Haji
2: Radio Haji 1674 AM 24/7 Indian Radio Sydney ka apna Indian Radio Station
3: Radio Haji
2: Stay tuned।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਇਸ਼ੂ ਬੋਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ 1674 AM ਰੇਡੀਓ। ਹਾਂਜੀ।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: हेलो सत श्री अकाल जी, मैं आपकी प्यारी सी लल्ली और आप मुझे चुन रहे हैं रेडियो जीवर।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाय, दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
3: हां जी रेडियो।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जीलोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: You are listening.
3: Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji, Radio Haji.
2: Radio Haji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
3: Radio Haji.
2: Stay tuned.

0: things black.
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: Hi, this is Imran Hashmi and you're listening to me on Radio Haji

0: Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister Shivani is with us. Namaskar and welcome, sister.
1: Om Shanti.
0: Welcome to Being Bliss.
1: Thank you so much.
0: Last episode में हम लोग बात कर रहे थे कि पैसे का महत्व क्या है और चीजों का महत्व क्या है. फॉर एग्जाम्पल कार का या खिलौने का या बचपन में जो मैंने बात की थी पतंग का, कि हम पैसा कमाते कमाते खुशी ढूंढते ढूंढते वो चीज भूल जाते हैं जिससे पैसा नहीं खरीद सकता.
1: क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि जो चीजें हम खरीद रहे हैं वो खुशी के लिए हैं, तो देन इट वॉज एक्चुअली कि खुशी पैसों से खरीदी जा रही थी.
0: और नहीं खरीदे और पैसा ना हो
1: तो वी थॉट विल नॉट बी हैप्पी ना.
0: तो बात
1: तो इवन व्हेन वी से कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, बट इफ आई से पैसों से एक दो तीन चार चीजें खरीदी जा सकती हैं और जब ये चार चीजें आएंगी तो मैं खुश होंगी, सो इट इफेक्टिवली केम टू आई वॉज बाइंग हैप्पीनेस.
0: That's a nice word.
1: It is effectively coming
0: nice
1: to that.
0: Nice line, buying happiness.
1: I'm buying happiness, and which meant कि जब तक ये चीजें मेरे पास नहीं आएंगी, I'm not happy. क्यों नहीं आ रही? मेरे पास पैसा नहीं है. तो पैसे कमाओ, चीज खरीदो, be happy.
0: और जब तक ये सब नहीं मिलेगा, I'm buying unhappiness.
1: Very good. So my dependency चीजों के ऊपर, and फिर equation. See, it's very important कि equation of life has to be set right. अगर बेसिक इक्वेशन राइट नहीं होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरी जीवन की यात्रा बीत जाए और फर्स्ट इक्वेशन राइट नहीं थी. क्योंकि जैसे आपने लास्ट टाइम शेयर किया, ये तो बचपन से सिखाया गया था. एक वीडियो गेम पेरेंट घर लेके आएगा, बी हैप्पी, नाउ यू आर हैप्पी ना, नाउ यू गॉट दिस, नाउ यू
0: आर. बोलते भी है इतना कुछ, सब कुछ लेके आया, अभी भी दुखी है, अभी भी रो रहा है, और क्या क्या लाऊं. दूसरे बच्चों को देखो, कुछ नहीं मिलता है, उनके माँ बाप भी ये सब नहीं करते, मैं कितने महंगे महंगे खिलौने लाता हूँ, फिर भी रोता है.
1: एब्सोल्युटली परफेक्ट. तो इसका मतलब ये मेरी इक्वेशन कब बनी? राइट फ्रॉम दैट एज. यहाँ तक कि कहीं लेकर गए, घूमने के लिए भी लेकर गए, हॉलीडे पर भी लेकर गए. सो इट वॉज डीप इनग्रेन्ड, वी आर गोइंग देयर so that we will be happy.
0: Sister, मेरी बेटी को एक छोटा सा बच्चा हुआ, वो रो रहा था, तो मैंने उसके पास खिलौना ऐसे टी टी टी किया, तो वो उसका ध्यान उधर गया और वो रोना बंद कर दिया.
1: ठीक है.
0: अब मैं ये 2 रुपए का करता या 200 रुपए का करता, उसको एक्चुअली हुआ डिस्ट्रैक्शन.
1: डिस्ट्रैक्शन,
0: और वो हुआ चंद सेकंड्स के लिए. फिर वो जब उसकी आवाज से बोर हुआ, फिर रोने लग गया.
1: दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन. आज हम खुशी के लिए अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शंस में भी लेकर जाते हैं. टीवी देखना, मूवी देखना, शॉपिंग जाना, हॉलिडे के लिए जाना. माय होल लाइफ इट्स सो स्ट्रेस, सो मच वर्क, आई एम सो अनहैप्पी, सो मच टेंशन, लेट मी गो फॉर अ हॉलिडे.
0: और जिस तरह ये डिस्ट्रैक्शन से बोर होकर वापस रोने लगा, वैसे फिर आपकी बात आ गई.
1: तो हमने क्या किया इन चीजों में भी? आप देखो, शाम को घर आकर अगर मुझे रिलैक्स करना है, लेट मी रिलैक्स, तो वेयर इज माई पोजिशन टू रिलैक्स?
0: टीवी,
1: इन फ्रंट ऑफ द टीवी. नाउ देन वी सेड दिस गिव्स मी हैप्पीनेस, दिस वॉज नॉट गिविंग मी हैप्पीनेस. जैसे आपने कहा, वो थोड़ी देर के लिए मेरे माइंड को मेरी परेशानियों से डिस्ट्रैक्ट करता, क्योंकि उसके अंदर वो पावर थी कि मेरे माइंड को कंप्लीटली इंगेज कर लेता. तो मन जो सोच रहा था, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस ऑफ द डे, किसी के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा, ये सब मन पर चल रहा था. जब ये माइंड पर ये थॉट्स चल रही थी, आई वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज आई वॉज क्रिएटिंग दोज थॉट्स. केम होम इन द इवनिंग, सैट इन फ्रंट ऑफ द टीवी. अच्छा, टीवी डिस्ट्रैक्शन फिर भी ठीक है. स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीजें क्या आई? मूड ठीक नहीं है ना आज, टेंशन है ना, मेरे को गुस्सा बहुत आ रहा है ना, इस टाइम पे मैं एक सिगरेट ले लू ना, मेरा गुस्सा चला जाएगा.
0: एक सिगरेट ले लू, एक पिक्चर देखने चले जाता हूँ, पिक्चर देखने के बाद बार में चले जाता हूँ, बार के बाद डांस में चले जाता हूँ, सुबह 3 बजे घर आके फिर
1: और कुछ नहीं तो एक हॉलिडे पे चला जाता हूँ. ऑलवेज ये करूंगा तो खुशी, ये करूंगा तो खुशी, ये करूंगा तो खुशी. डिस्ट्रैक्शन, जितनी देर हम वो करेंगे, हमारा मन हमारी प्रॉब्लम से हट जाएगा.
0: बट
1: खुशी नहीं आई है, वो वाली सोच बंद हो चुकी है थोड़ी देर के लिए. What is alcohol doing to me? What is a cigarette doing to me?
0: थोड़ी देर के लिए मन को
1: thought stops, it becomes numb. my conscious layer of thinking has become numb with the substance. या शॉपिंग, आज बहुत सारे लोगों के लिए शॉपिंग एक डी

0: बाद में हमारे समझ में आया छोटी सी बात थी, उसको नींद आ रही है और भूख लग रही है।
1: चीज कुछ और चाहिए, हम चीजें कुछ और दे रहे हैं। वी हैव टू रिमेम्बर, अगर हम अपने मन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने दर्द से, यू नो फिजिकल पेन को भी आप देखो, अगर हमें थोड़ा भी दर्द है, आई हैव अ टूथएक, आई हैव अ स्टमक एक, आई हैव अ नी पेन, लेट मी डिस्ट्रैक्ट माई माइंड टू समथिंग एल्स। एक मूवी देखने बैठ जाओ, दर्द नहीं होगा उतनी देर। किसी के साथ बातें करने बैठ जाओ, दर्द महसूस नहीं होगा। यहां तक कि कोई काम जो एंजॉय करते हैं, कि हम जब काम कर रहे होते हैं हमें दर्द नहीं होता कहीं शरीर में, जब काम खत्म हो जाता
0: है, दिन के बाद घर आया, भूख लग रही, तो खुशी खुशी डिशेस बना बना के भाग भाग के दे रहे हैं, फिर जब हो गए खा पी के, अरे मेरे को तो यहाँ दर्द है।
1: एब्सोल्युटली,
0: हमारी शूटिंग में होते हैं हमको, फाइट वाइट में मार लग जाती है, घर जाके जब शावर के नीचे जलने लगता है इधर उधर, अरे यार यहाँ चोट कब लग गई थी पता ही नहीं चला, यहाँ दर्द हो रहा है।
1: नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, चोट थी उस टाइम भी, चोट थी,
0: महसूस नहीं हुआ,
1: मन उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं हुआ,
0: ओके,
1: द माइंड डिडंट गो टुवर्ड्स इट, सो इट डिडंट फील इट, बट द पेन वाज देयर, दर्द वहां पे था। इसी तरह अगर मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, मैं परेशान हूँ, मैंने कहा अल्कोहल ले लो, सिगरेट ले लो, टीवी देख लो, वी सेड दिस इज अ डी स्ट्रेसर, लेट अस अंडरस्टैंड इट्स नॉट अ डी स्ट्रेसर। इफ इट वॉज अ डी स्ट्रेसर, मतलब वो वाली चीज मेरे स्ट्रेस को खत्म करती, मेरा दर्द वही का वही है, लेकिन मैंने क्या किया, दर्द से अपने मन को थोड़ी देर के लिए हटा दिया। इज इट हेल्दी?
0: कभी कभी हटाते भी हैं और कभी कभी बढ़ भी जाते हैं,
1: लेकिन फर्स्ट इज इट हेल्दी अपने मन को दर्द से हटाना?
0: हेल्दी तरीके से हटाना हेल्दी है?
1: नहीं, इस तरह से सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करके अपने मन को दर्द से हटाना, विल इट बी हेल्दी?
0: नो।
1: व्हाई?
0: क्योंकि वो झूठा झूठा आर्टिफिशियल है ना।
1: नॉट ओनली दैट, सपोज मुझे जैसे आपने कहा घुटने में चोट लगी है, सुबह से शूटिंग चल रही है, सुबह में चोट लगी थी, रात तक उस पर ध्यान नहीं दिया तो दर्द की महसूसता नहीं हुई, लेकिन रात तक उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो चोट उतनी देर में
0: बढ़
1: चुकी है। अगर हम अपनी जो चिंता है, परेशानियां हैं, जो वो थॉट्स हैं, अगर हम उन पे वर्क नहीं करेंगे, उनको ठीक करने की अटेंशन नहीं देंगे, हम सिर्फ उनको डिस्ट्रैक्ट करके दूसरी चीजों में लगाते जाएंगे, वो जो बीमारी है, वो जो दर्द है, वो डे बाय डे बढ़ता जाएगा। बिकॉज इफ यू डोंट हील इट, इट्स इंक्रीजिंग, यू आर जस्ट टेकिंग योर माइंड अवे फ्रॉम इट। सो ये जो सारी चीजें हैं,
0: जैसे वो बच्चे को कितना भी डिस्ट्रैक्ट करो, उसकी भूख और लग रही है, और लग रही है, उसके जो
1: क्योंकि उतना टाइम,
0: नींद उसको और आ रही है, और चिड़चिड़ा हो रहा है।
1: आपने क्या किया, आपने आधा घंटे तक उसको वो देने की बजाय
0: कुछ और ट्राई किया,
1: कुछ और ट्राई करते गए, और जितनी देर बीच में टाइम गया उतना उसकी वो चीज जो चाहिए थी वो बढ़ता गया। सेम विद माई जर्नी ऑफ लाइफ, पेन है अंदर, दर्द है, मैंने कहा खिलौना ला दो, फिर उसके बाद बड़े हुए मोटरसाइकिल ले दो, ये खुशी देगा, ये खुशी देगा, अपने बेसिक थिंकिंग को उस पे वर्क नहीं किया तो वो जो थिंकिंग है, वो जो चोट है अंदर, वो जो दर्द है अंदर, वो तो दिन ब दिन बढ़ता ही गया ना, और फिर एक ऐसी स्टेज पे आके पहुंचे कहते हमारे घर में अब सब कुछ है,
0: सुख शांति नहीं है, हैप्पीनेस
1: नहीं है, दर्द अभी भी वही है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हम अपनी खुशी को जहां जहां ढूंढ रहे हैं, सी टू फाइंड हैप्पीनेस लेट अस फर्स्ट रिमूव ऑल दोस थिंग्स जहां हमने सोचा कि खुशी है, वी गोइंग द अदर वे अराउंड, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर वेयर इट इज, फर्स्ट चेक ऑल दोस थिंग्स वेयर इट इज नॉट वेयर वी थॉट इट इज। ऑब्जेक्ट्स, सारे ऑब्जेक्ट्स, साधन,
0: एडिक्शन,
1: यू नो जैसे आपने कहा सुख शांति, ये जो हमारे साधन है जीवन के, इनको भी आज हमने टाइटल क्या दिया, सुख सुविधा के साधन, ये सुख के साधन है हमारे, हमने कहा ये सुख के साधन नहीं थे, ये कंफर्ट के साधन थे।
0: लेकिन सिस्टर पहले जमाने में सुख का साधन रेफ्रिजरेटर हुआ करता था 40 साल पहले, अब नेसेसिटी हो गया है।
1: 40 साल पहले भी वो सुख का साधन नहीं था,
0: कंफर्ट था,
1: कंफर्ट, नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
0: नाउ एसेंशियल हो गया ना,
1: तो भी, लेकिन एसेंशियल ऑल्सो फॉर व्हाट, फॉर कंफर्ट। सुख और कंफर्ट, खुशी और कंफर्ट अलग चीज है, ये हर

0: बाद जीवन में हर चीज खरीदते समय जब हम दुकान में जा रहे हैं, आई हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट एम आई बाइंग एंड व्हाई एम आई बाइंग. लेट अस नॉट मेक ऑब्जेक्ट्स आर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस.
1: एंड इज इट वेरी इंपॉर्टेंट टू बाय राइट नाउ.
0: एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, या लेट अस नॉट मेक देम आर स्टेटस सिंबल. वी हैव मेड ऑब्जेक्ट्स. मेरे पास फोन कौन सा है? फोन का काम है बात करने के लिए. लेकिन ये फोन होगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? ये ऐसे वाला फोन है इनके पास. तो मैंने ऑब्जेक्ट्स को,
1: आप फोन की बात कर रहे हैं, अभी मैं आ रहा था जब हैदराबाद इस शूटिंग के लिए, तो मेरा स्टाफ बोल रहा था, साहब ये तो विवेक जी का स्टाफ लेकर जाता है बैग, आपको शोभा नहीं देता, आप जरा महंगा वाला बैग ले लो. मेरा स्टाफ मुझे सिखा रहा था क्योंकि एयरक्राफ्ट पे एयरपोर्ट लोग देखेंगे. हाँ. ये उतरेंगे तो कौन सा साहब ने कौन सा वो लाया, कौन सी घड़ी पहनी है.
0: एब्सोल्युटली. तो ऑब्जेक्ट्स को हमने क्या क्या बना दिया, साधनों को, चीजों को हमने क्या क्या बना दिया. और तब क्योंकि उसको हमने स्टेटस सिंबल बना दिया, हमने उसको रिस्पेक्ट का तरीका बना दिया.
1: हाँ, जैसे आपने लास्ट टाइम भी कहा था, रिस्पेक्ट प्रोटोकॉल स्टेटस सिंबल. लेकिन मैं आज भी ये बात नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं फिर वहीं आऊंगा कि आज की दुनिया में जैसे कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग, शो ऑफ शोमैनशिप की जरूरत. जब सब लोग ये करते हैं तो मतलब सारी दुनिया ही रॉन्ग होगी आपके लिए.
0: अगेन, वी आर नॉट सेइंग रॉन्ग और राइट. इट्स नॉट अबाउट रॉन्ग और राइट, इट्स अबाउट क्लैरिटी. इट डजंट मीन कि आप अच्छे कपड़े नहीं पहनो. It doesn't mean कि आप बड़ी से बड़ी गाड़ी, महंगे से महंगा मकान नहीं खरीदो.
1: आपको मालूम है हमारे दोस्त लोग क्या बोलते हैं, यार क्या इस आदमी का स्टाइल है, क्या रॉयल आदमी है, स्कॉच से कम तो पीता नहीं है, BMW से कम तो उतरता नहीं है, पर्स भी लेता तो महंगे में महंगा, शर्ट भी लेता, क्या आदमी रॉयल है, क्या स्टाइल है उसका,
0: स्टाइल
1: तो कितनी
0: है
1: उसकी, क्या उसकी इज्जत करते. आते तो खड़े होते हैं लोग,
0: खड़े होते हैं.
1: कोई मैं पैजामा पहन के धोती पहन के चला जाऊं,
0: खड़े होते हैं. अगेन वी सॉ लास्ट टाइम, खड़े होते हैं.
1: तो
0: स्टाइल है, अग्रीड. ये रिस्पेक्ट नहीं है.
1: जो भी अच्छा तो लगता है ना,
0: अच्छा लगता है कि आपके लिए लोग खड़े हो रहे हैं, दैट्स फाइन. सी, वी आर नॉट, सी अगेन, वी आर नॉट सेइंग राइट और रॉन्ग. वी आर सेइंग
1: सोसाइटी में तो यू आर रिस्पेक्टेड, वेल एक्सेप्टेड.
0: एक्सेप्टेड, रिस्पेक्टेड, डिफरेंट वर्ड्स. एक्सेप्टेड मीन्स हाँ, इन्होंने बहुत अचीव किया, उस बात को एक्सेप्ट किया है. आपके व्यवहार, स्वभाव और संस्कार को एक्सेप्ट किया है. आपकी गाड़ी को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, आपको एक्सेप्ट किया. अगर आपने जब
1: आज मैं अपनी बेटी शादी में दूं तो अच्छे स्वभाव और संस्कार खाली देख के नहीं दूंगा.
0: इनिशियली
1: ये देखूंगा, ये देखूंगा इसके कितने बंगले हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितने नौकर हैं. मैं खुद नहीं करूंगा तो आपको फिर मैं क्या बोलूं?
0: अब जब आप ये सब देखकर रिश्ता जोड़ेंगे,
1: बहुत बड़े संस्कृत के स्कॉलर, बहुत बड़े पंडित जो सबकी शादियां कराए, सबको डोनेशन करके, घर में कुछ एक छोटी सी हंडी है उधर मैं बेटी दे दूंगा, इतने बड़े संस्कार वाला आदमी है.
0: परफेक्ट. तो आपने डिग्री देखी, लुक्स देखी,
1: गाड़ियां देखी, मेरी बेटी कितना आराम करेगी वो देखा,
0: सब कुछ देखा.
1: नौकर है या सारे दिन किचन में बैठे रहेंगे, सब देखूंगा ना.
0: सब देखकर शादी की ना,
1: देखकर ही करूंगा,
0: देखकर ही करेंगे ना. फाइनली जो रिश्ता जुड़ेगा दो लोगों के बीच या दो परिवारों के बीच, जो रिश्ता जुड़ेगा और कितना सुंदर वो रिश्ता होगा, कितना उनका आपस में संस्कारों में तालमेल होगा, कितना सुखी वो परिवार होगा, कितना प्यार उन दो लोगों के बीच में होगा, गारंटी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्स एंड द बंगलोज यू सॉ इन द बिगिनिंग.
1: नहीं, मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि जैसे आपने पिछले एपिसोड में कहा था कि ये रिश्ता दुकान में नहीं खरीद सकते, पैसे से नहीं परचेज किया जाता, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा.
0: अब यही अगर हम थोड़ा सा स्वभाव संस्कार देख लेते उस टाइम, हम किस से शादी करते,
1: फिर ध्यान में क्यों नहीं आती ये बात है?
0: क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइफ, अगर मेरी बेटी जिस घर जाएगी वहां अगर गाड़ी होगी, बड़ा मकान होगा, उस घर में अगर सारी चीजें होंगी तो मेरी बेटी खुश रहेगी.
1: नहीं, वैसे अगर देखा जाए तो मुझे इतने ऐसे परिवार मालूम है जहां पर डिवोर्स ही हुआ है.
0: इट्स नॉट ऑल्सो कि अगर ये सब
1: नहीं, रिचनेस देख के किया, पैसा देख के किया.
0: इट्स नॉट, सी अगेन, इट्स नॉट कि रिचनेस इज नॉट राइट, रिचनेस इज ब्यूटिफुल. It's beautiful to have money. Very nice. But don't say money for happiness. पैसा होना आपके पास है, it's beautiful. आप दुनिया की सबसे महंगी चीज खरीद सकते हैं, beautiful. लेकिन खरीदते समय ये अपने आप से नहीं कहना कि this object is giving me happiness and respect.
1: एक छोटे मोटे शायर ने एक लाइन बोली थी, उसने बोल दिया है पैसा तो खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम तो खुदा से कम भी नहीं. तो उसने इक्वेट कर दिया पैसे को खुदा से,
0: क्योंकि
1: और हिंदी में भी बोले लक्ष्मी, लक्ष्मी पूजा. तो ऐसे ही सब बन गए, मतलब इतनी.
0: लेकिन अब चेकिंग करनी है ना, अब अपने जीवन की चेकिंग करनी है. अगेन, सब लोग क्या करते हैं, वी आर नॉट गेटिंग इट टू दैट. लेट मी सी माय क्वालिटी ऑफ लाइफ. आई हैव एवरीथिंग दैट मनी कैन बाय. I have everything that money can buy.
1: But
0: why am I not happy today? Each of us can sit back and ask themselves, I have everything that money can buy.
1: इसका जवाब तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि सिस्टर मेरी गुरु के पास मैंने हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को झुक कर माथा टेक कर भीख मांगते हुए देखा है अपनी आंखों से कि मुझे गुरुजी मुझे सुख शांति दो, मैं खुश नहीं हूँ. अब इसका जवाब तो मेरे पास नहीं, सब कुछ रखते हुए खुश क्यों नहीं है. फिर मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि जो बिल्कुल बिल्कुल ही मतलब दरिद्रता में है, जीरो मनी में है, उधार में है, परेशान है, उसके बाद भी तो नहीं है ना सुख शांति.
0: इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, विच मीन्स ये दोनों चीजें अलग अलग हैं.
1: दोनों एक्सट्रीम्स हैं.
0: नहीं, एक्सट्रीम्स नहीं है, दो अलग अलग चीजें हैं.
1: तो जिसके पास कुछ नहीं है वो भी दुखी है.
0: ये दो अलग चीजें हैं. फर्स्ट लेट्स लुक एट इट. ये दो अलग चीजें हैं. एक चीजें हैं जड़, सारी जड़ चीजें हैं जो पैसा खरीद सकता है. सारी मेरी अचीवमेंट्स हैं जो मैंने इस जीवन में की, वो एक साइड है. लेट्स टेक इट एज वन साइड. दूसरी साइड है माय होल लिस्ट ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स, माय वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, जिसमें आपने जैसे कहा सुख, शांति, लव, रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस, ब्लिस. ये एक लिस्ट है. वी आर नॉट सेइंग कि जिसके पास पैसा है उसके पास खुशी नहीं होगी, या जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास खुशी होगी. इट इज जस्ट दीज टू आर टू डिफरेंट थिंग्स.
1: अच्छा,
0: ये दो अलग अलग चीजें हैं. ये ना सोचें कि ये वाली लिस्ट आ जाएगी तो ये वाली भी लिस्ट आ जाएगी. हमने सिर्फ वो छोटी सी की गड़बड़. ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है.
1: कौन सी लिस्ट प्लीज बताइए.
0: एजुकेशन, अचीवमेंट्स, ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव बॉट, दिस इज वन लिस्ट. हैप्पीनेस, लव, रिस्पेक्ट, पीस ऑफ माइंड, दिस इज वन लिस्ट. वी जस्ट हैव टू रिमेम्बर दीज आर टू डिफरेंट लिस्ट्स. ये दो अलग अलग चीजें हैं. हमने क्या कहा, ये आएगा, चीजें आएंगी, अचीवमेंट आएगी, प्रोफेशनली आई विल डू वेल, अचीव करियर में मैंने बहुत ज्यादा किया, तो ये लिस्ट अपने आप आ जाएगी. खुशी आ जाएगी, लोग मुझसे प्यार करेंगे, लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे. तो हमने कहा ये लिस्ट आएगी तो ये वाली लिस्ट अपने आप आ जाएगी. तो हमने अपने जीवन में मेहनत सारी कौन सी लिस्ट पे की, इस वाली लिस्ट पे. यू नो इट्स लाइक हैविंग टू गार्डन्स, एक हमारे घर के आगे, एक हमारे घर के पीछे. तो ये दो गार्डन है हमारे जीवन के, दो गार्डन है. एक है भौतिक, जिसको आज लोग कहते हैं मटीरियलिस्टिक लाइफ. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ. मटीरियलिस्टिक मीन्स मैटर, एवरीथिंग दैट इज आउटसाइड मी, मटीरियलिस्टिक. वन इज द स्पिरिचुअल साइड ऑफ लाइफ. व्हाट इज द स्पिरिचुअल साइड ऑफ लाइफ? एवरीथिंग दैट इज इनसाइड मी. मटीरियलिस्टिक, एवरीथिंग आउटसाइड अचीव्ड. स्पिरिचुअल, एवरीथिंग इनसाइड. राइट, तो कहते हैं मटीरियलिस्टिक लाइफ जब से हो गई ना तब से खुशी गुम हो गई. नॉट ट्रू, नॉट ट्रू एट ऑल. किसी के लिए कहेंगे ये बहुत मटीरियलिस्टिक है, मीन्स इट्स नॉट राइट. नो, इट्स नॉट ट्रू. इट्स गुड टू बी मटीरियलिस्टिक. यू शुड हैव एवरीथिंग. आप जितना खरीद सकते हैं यू शुड हैव एवरीथिंग विद द क्लैरिटी. ये एक गार्डन है मटीरियलिस्टिक. ये दूसरा गार्डन है सुख, शांति, खुशी. हमने क्या कहा, इस गार्डन को पानी देंगे
1: तो ये अपने आप ग्रो हो जाएगा.
0: अपने आप ग्रो हो जाएगा. तो हमने अपने दिन के 24 घंटे किस गार्डन में बिताने शुरू कर दिए.
1: मटेरियलिस्टिक
0: वाले में, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है,
1: और उसको हमने इसका रिजल्ट मान लिया, ये करने से वो
0: ये हो जाएगा। हाँ, हमने सोचा इधर मैं पूरा दिन बिताऊंगा ना इस गार्डन को सुंदर बनाने में, तो मेरा ये गार्डन तो अपने आप हो जाएगा, लोग मुझसे प्यार करेंगे, खुशी आ जाएगी, विश्वास होगा, रिस्पेक्ट मिलेगी सबसे। हमने ये गार्डन पर ध्यान नहीं दिया,
1: क्या करें बात।
0: अब रिजल्ट क्या हुआ, हमारा ये गार्डन तो बहुत सुंदर हो गया है। आज आप देखो हमारे पास सब कुछ है, तो हमारा आगे वाला गार्डन तो बहुत सुंदर हो गया। जिस गार्डन पर ध्यान दिया, दिस इज अ लॉ, स्पिरिचुअल लॉ, वेर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, वेर एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रो। आप जिस चीज पर अटेंशन देंगे आपकी पूरी ऊर्जा वहां जा रही है, जहां आपकी ऊर्जा जाएगी वहां अपने आप चमत्कार होने लगेंगे। आज हमने चमत्कार कर दिए हैं दुनिया के अंदर, हम स्पेस में जा सकते हैं, हम सागर की तलों में जा सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। अटेंशन वेंट देयर, एनर्जी वेंट देयर, वी क्रिएटेड मिरेकल्स। अपने अंदर खुशी क्रिएट करनी है, शांति क्रिएट करनी है, वो नहीं सोचा, क्योंकि हमने सोचा ये करेंगे तो वो अपने आप हो जाएगा, तो उस गार्डन पे अटेंशन नहीं दिया, अटेंशन डेंट को, एनर्जी डेंट फ्लो, और वो वाला गार्डन क्या हो गया।
1: क्या करेंगे, जो आप बोल रहे हैं अब इस वक्त सुनते हुए अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं देखूं तो द नंबर वन प्रोड्यूसर्स, नंबर वन एक्टर्स, नंबर वन डायरेक्टर्स, नंबर वन म्यूजिक के लोग अकेले घर में बैठे रहते हैं, जब उनकी पिक्चरें नहीं चलती फेल हो जाते हैं, और जब पैसा नहीं कोई पूछ, जहां चलता वहां जाते, तो उसको लोग, दैट इज देयर हैप्पीनेस, तो लाइफ,
0: तो वो ठीक नहीं, दैट्स नॉट हैप्पीनेस, दैट इज द फ्रंट गार्डन।
1: और जब घर पे लोग आना बंद करते हैं, फोटोग्राफर्स फोटो खींचना आपके छोड़ देते हैं, आपके पास कोई आके आर्टिकल्स आपके नहीं लिखता है, तो इधर के गार्डन में है कि कौन से गार्डन में है, वो कहां जाए,
0: पीछे वाला गार्डन।
1: इसलिए देखिए पॉन एंड ऑन उसी को पानी डालते रहते हैं,
0: उसी को पानी डालते रहते हैं ना, और पीछे वाला गार्डन सूख रहा है ना।
1: पीछे वाले गार्डन को कोई देखता है क्या?
0: देखता नहीं ना,
1: मैं खुद नहीं जाता वहाँ।
0: हाँ, तो अब पीछे वाले गार्डन को नहीं ध्यान दिया, तो फिर इवन व्हेन आई हैव एवरीथिंग, व्हाट डिड आई से, यू सेड आई एम नॉट हैप्पी, एंड देन बाय चांस, जैसे आपने कहा, अचीवमेंट में भी अगर कुछ कम हो गया, तो जब आगे वाला गार्डन सूखा हुआ थोड़ा सा मिला,
1: पीछे भी खाली पड़ा।
0: नाउ नाउ लेट्स लुक एट द अदर वे,
1: ये पॉइंट अच्छा है।
0: yes.
1: आगे सपोजिंग जब खाना पीना है सब खत्म हो गया, तो पीछे जो हमने स्टॉक में रखा है नहीं कुछ के संभाल के, वहाँ अपन उस गार्डन में बैठ के आराम करें,
0: नहीं कर सकते ना?
1: अगर उस गार्डन में मैं राजा हूँ, तो यहाँ के राजा में इतना राज हार भी जाऊं, तो ये राज उसके हवाले करके वहाँ वापस राजा बन सकता।
0: ब्यूटिफुल ना। अब इसमें देखो, आगे वाले गार्डन में मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट, पीछे वाले गार्डन में खुशी कॉन्फिडेंस, खुशी कॉन्फिडेंस पावर ट्रस्ट रिस्पेक्ट, ये मेरा पीछे वाला गार्डन है। मेरा आगे मटेरियल गार्डन मुझे स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट नहीं दे सकता है, बट स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट मेरे मटेरियल गार्डन को स्ट्रॉन्गर बना सकता है।
1: और मटेरियल गार्डन नष्ट भी हो जाए तो वह सुख शांति मुझे दे सकता है।
0: I am still
1: लेकिन ये
0: happy.
1: वाला, हाँ, सुख शांति स्पिरिचुअल गार्डन दे सकता है, ये गार्डन सुख शांति
0: खुशी
1: नहीं दे सकता,
0: क्योंकि ये बाहर है,
1: थोड़ी समझ में,
0: ये चीजें बाहर है। स्पिरिचुअल अगेन डजंट मीन सम अदर थिंकिंग, यू नो, सम पीपल से ओ व्हाई डिड यू गो इन द स्पिरिचुअल लाइफ, इट्स नॉट अ डिफरेंट लाइफ, इट्स
1: स्पिरिचुअल, मतलब ये तो नहीं ना माला लेके सारा दिन जपते रहना।
0: एक है जो चीजें बाहर हैं और एक है वो चीजें जो अंदर हैं। खुशी एक फीलिंग है, लव फीलिंग है, रिस्पेक्ट फीलिंग है, कंटेंटमेंट फीलिंग है, विल पावर फीलिंग है, ट्रस्ट फीलिंग है। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिट, आत्मा की ये सारी जो फीलिंग्स हैं, ये अंदर हैं। नॉलेज अचीवमेंट डिग्रीज पोजेशन प्रॉपर्टी रिलेटिव्स बाहर है,
1: ये फीलिंग्स है और वो फीलिंग है।
0: हाँ, स्वीट। हाँ, yes.
1: इससे खोखलापन आता है, इससे भरता जाता है।
0: उससे खोखलापन भी नहीं आता, सी दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी एक पॉइंट है।
1: खोखलापन नहीं बोल रहा, उससे वॉइड जो आप बोल रहे थे, सब कुछ रखते हुए भी अशांति नहीं आ रही है।
0: right.
1: मेरे गुरु के पास लोग जाते हैं, पांव पड़ते हैं, मेरे पास सब कुछ है, मेरे को सुख शांति नहीं है, उसको मैं शब्द को खोखलापन, वो वॉइड, वो खालीपन, वो जब बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ फीलिंग बता रहा हूँ, वहाँ फीलिंग है।
0: Like you said, कि सब कुछ है, मतलब मेरा सामने वाला गार्डन इज फ्लरिशिंग। फ्लरिशिंग मतलब अब कोई रह नहीं गई चीज जो मैं उस गार्डन में ग्रो करूं, सब कुछ आ गया। अब मैं पुराने वाले पीछे वाले गार्डन पर गया, क्योंकि उसको मैंने पूरी तरह से क्या कर दिया था, निग्लेक्ट कर दिया था। वहां क्या आ गया, जिस चीज पर अगर गार्डन पर अटेंशन नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा,
1: वो क्या बोलते हैं कांटे वाले झाड़,
0: जमीन बंजर भी हो सकती है, बहुत कुछ हो गया। तो जीवन कैसे हो गई, नीरसता, दुख, गुस्सा,
1: चुभने वाले कांटे वाले मैं पेड़ बन जाता हूँ, लोगों को चुभता।
0: अब ये भी नहीं करना है कि ये गार्डन से ध्यान हटा के इस गार्डन में लग गए तो वो वाला गार्डन सूख जाए। जीवन की इक्वेशन बहुत राइट होनी चाहिए। ये गार्डन भी इम्पोर्टेंट है, ये गार्डन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 24 घंटे अगर इस गार्डन में बिताते हैं कि वॉट ऑल आई हैव टू डू डू डू डू डू द होल डे, आई हैव टू डू ऑल दिस, 24 घंटे अगर ये गार्डन में बिताते हैं सिर्फ सारा कुछ बाहर करते हुए, इफ आई एम टेकिंग केयर ऑफ हाउ आई एम बीइंग व्हाइल डूइंग, फर्स्ट वी सेड व्हेन आई डू इट आई विल बी, नाउ वी गोइंग टू चेंज इट लिटिल बिट एंड चेंज द वे वी आर गोइंग टू लिव हाउ आई विल बी व्हाइल डूइंग इट। एक था ये होगा तो देन आई विल बी हैप्पी, नाउ वील गो ऑन अ जर्नी एंड से व्हाइल आई एम हैप्पी नाउ आई एम डूइंग दिस। मतलब इस गार्डन का ध्यान रखते हुए अब मैं इस गार्डन का ध्यान रखूंगा। तो मेरा जो ये गार्डन है, माय इंटरनल गार्डन, इफ दिस इज ऑलवेज स्ट्रांग, तो अगर मेरा जो आउटर गार्डन है ऑफ अचीवमेंट्स, उसमें अगर कभी थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ भी जाए, मेरी खुशी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने कहा पीछे वाला गार्डन हमेशा स्ट्रांग है, अब इसमें सेटिस्फैक्शन इस बात की है कि जो ये बाहर वाला गार्डन है ना, ये परिस्थितियों और लोगों पर डिपेंडेंट है, लेकिन जो ये पीछे वाला गार्डन है ये सिर्फ एक के कंट्रोल में है, परिस्थितियां और लोग मेरे कंट्रोल में नहीं है।
1: एक के कंट्रोल में मतलब
0: मेरे अंदर का जो गार्डन है वो किसके कंट्रोल में है?
1: एक मीन्स
0: में आई
1: सिस्टर, एक मीन्स मैं, बहुत अच्छा ये पॉइंट है, मुझे इस पे आपसे बात करना है, मैं अगले एपिसोड में जरूर करूंगा। और इस बार समय बीतता जा रहा है तो धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार एंड ओम शांति।
0: ओम शांति।
2: टीवी, शॉपिंग, हॉलिडे, स्मोकिंग और एल्कोहल इज नॉट अ डिस्ट्रेसर, इट इज ओनली अ टेम्पररी डिविएशन फ्रॉम द पेन। The emotional wound of stress, anger or hurt gets deeper because instead of healing it, we are distracting our mind away from it. Achievements and possessions can get us regard, not happiness and respect. Regard is an outer gesture and respect is a feeling for what the person is. Possessions give us comfort. Physical comfort is different from emotional comfort. Happiness, peace and love is our internal creation and can be created irrespective of external comforts.
3: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us at

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: हमारी web.com की पेज कर
1: हम थोड़े मोटे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरी टोयोटा दे नाल
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉस वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
3: हां जी हां जी ओए हां जी
4: हां जी रेडियो

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਲਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

0: बात करके तो तसल्ली कर रहे हैं कि कहीं कोई सांस बाकी तो नहीं रही।
1: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नु छू जान वाली अते रूह नु हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
2: देखो सच बता दो।
3: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
1: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधु। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नु तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 ते या फिर विजिट करो bansalimmigration.com।

ब्रेक नहीं कर सकती, गाने हिटरों के मुंह पे जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारो नीनो जूम, ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

ग्रोवर्स, विंग ग्रोवर्स, हाँ जी हाँ जी, 1674 ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो सुनते रहो, हाँ जी AM।